ना को होए। जे वड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खसम विसारह ते कम जात, नानक नावै बाज सुनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सत गुर सत पुरखा। बिनो करो गुर पास, हम कीरे करम सतगुर सरणाई। कर दया नाम परगास, मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास। रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपतास है, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस, नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मह जंत उपाए। ताका रिजक आगे कर तरिया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मान पाओ करिया। उडे उड आवे सै कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपार। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावह

जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समान एक दाते एक पेखारी जी। सब तेरे चोज विडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी। हों तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी। तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेवा है जो सेवा है तुद जी। जन नानक तिन कुर्बाणा, हर त्यावह है हर त्यावह है तुद जी। से जान जुग मैं सुखवासी, से मुकत पाए जिन हर त्याया जी। तिन टूटी जम की फासी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी। तिन का पौ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी। ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी। जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी। भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी। हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक कर है हर पूजा जी। तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत सास्त जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जेवड अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा। तू एको जी तू निःचल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करहै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सहका जानोई, आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई। जो तौ पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई। रहाओ सब तेरी तू सबने त्याया, जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखा है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ै पई ले निवासा। पानी पावक तिन है किया, पंकज मोह पाग नहीं चाले। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतस मूड मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या। मूरख मुगधा जन्म पाया, प्रणवत नानक तिन की सरणा। जिन तू नाही विसरया, आसा महला पंजवा पई परा।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करियै, सब बैरन को आज संगरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारियै, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दय मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, घट घट के पट पट की जाना। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्बकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा। ताकौ कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपुनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण कहता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मह हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते

सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मात एक ना मानेओ।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया, शब्दो तगावहो हरि केरा मन जिनि वसाया। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा। अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा। घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कन्हेरे। कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुरबान कीता गुरु विटहो जिस दिया ए वडियाईया। कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटुक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कहे नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे।

0: तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब तेरी
1: तुम अद पिता हम बारक तेरे तोरी कृपा कोई न जाने तुम पूजे ऊचा भगवंत सगल समागिरी तुम सूतर तारी तुम ते हो सो आगे का

सत्संग जी, बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास भगवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्याय। फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास से सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याटे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कारण उन्हें ध्यावता है सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्र आत्मिक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पहाड़दार दाते अंतर के खालसा से बोलो जी। वाहे गुरु गरीबन वाज आप जी दे पंच प्यारी चार साहब जा दे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन छकिया दे चलाई ते वाहे देख के डिट किया तेना प्यार सत्यारे की कमाई दते अंतर के बोलो जी। वाहे गुरु जन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म हे सी दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुआईया चरखड़िया ते चढ़े आर न चराए गए गुरुद्वारे सेवा ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसी तरीके सत्संग लवाया तिना की कमाई दते अंतर के बोलो जी। वाहे गुरु पंजा तख्त सवाल गुरुद्वार हमारा ध्यान करके बोलो जी। वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता वै चित आवन का सदका सर्व सुखो वै जहां जहां गुरु खालसा साहब रचे रहाय देवते की फतेह बृत की पहज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। वाहे गुरु सिखां नूं सिखी दान के दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन इशनान चौंकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहे गुरु सिखां दा मन नीवा मत उचे मत पद के राखे आप वाहे गुरु गुरु की प्रवाह पंथ सदा सहाय दियो गुरुद्वारा दिन काला साहेब पंजा साहेब थोर गुरुद्वारे गुरताहां जिन्हों तो आप के पंथ छोड़ा गया है उन्होंने खुले दर्शन की दाल सेवा समाज का दान अपनी खालसा जी बख्शो हे नोटिया की ओट गुरु न्यासरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार पिता जी हो आपके चरण कामना अरदास मिताजी आपने बख्शिश की है आपके अन्ना पितर गुरबाणी सुखमी साहब संपूर्ण पाठ दरदार उपरंत संध्या समा जान के आपके चरण सोदार रास्ते पाठ की तेरे कृपा करो होइया भुलां चुकां की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत की कृपाता करो जी अगो तो शुद्ध पित्र बाणी टालनी बड़ा बुद्धि बख्शिश करो गरीब नवाज इस खुशी विच आप जी बख्शिया दातों विचों पित्र कड़ाब शाजिर देगा तैयार कर खाल दतार आप जी भोग लो शीत प्रसाद सात संगत की रसना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पित्र नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शे करो जी कृपा करो गरीब नवाज ये दतार जी हो आप जी बख्शिया दातों जो लंगर तुर सवार प्रवान करनी गरीब नवाज आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैली संघा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाटीगर बख्शो अरे सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना बखरी पालता करो गरीब नवाज जी कृपा करो दतार अमृत वेले तो लैके दर से आई सब संगत हाजरी दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगत दर से तिर फुर भेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी कृपा करो गरीब नवाज खास संबंध सिख कौम एकता सुग प्यार की बख्शिश करके सत लोज दाल बख्शो चाना ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान जवान फतेह बख्श कर इबादत करो जी गरीब नवाज कृपा करो दतार दूर दराज कराने बैठिया लाइव खत्म की सरण करियां सारे संगत हाजरी प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ आपने बख्शे की संगत ने तो बख्शे संगत आदि चरणा धनबाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरुग्रह सेवा संघ उतार संगत माया बेटा करी चरणा प्रवान करो बख्शा साहब ने कमाइया सफल करो कार्ज वाध उतार सब संगत शुभकामना संबंध पूरिया करो जी उतार मेहरबान कराओ गरीब नवाज सेवा प्रवान करो भुला चुका माई बख्शो गरीब नवाज बेहंत पुराणा वालों बेहंत माया बेहंत रसदाम आपके लंगर देखा सुने मंदिरों वास्ते हाजरियां प्रवान करो कृपा करो सब कमाइया सफल करो काजे बख्शो दिता सब संगत परिवार सुख रखो सब दुभकामना पूरी करो घर वजवाज बख्शा की कृपा करो जी दतार मेहर करो सेवा प्रवान करो पुल रंगमा बख्शो पवित्र नामे बख्श कर प्रंत अज के शाम की कथा की दमता वास्ते आग्या बख्शो रेंदे कार सुहार के चरण तुना दि बनाओ शुद्ध के पितर सेवालियां की कृपा दतार सही प्यारे मेरे जिले बनाव का नाम जता नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਕੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ।

सुनिहाल सत्रियाकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: आनंद मंगल सुख पाए। वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की
0: फतेह।
1: और सत्कार जो सत्संग जी महाराज बख्शी साहब संत ने बड़ी श्रद्धा पावन साहब पुत्र ब्रह्मानी सुखमी साहब जिसने पूर्व पाठ आप जी सरण किए ने उपरंत संध्या समय जान के सोदर राज साहब के पास सरण किए हैं। अरदास भरिया ने महाराज बख्शी पुत्र कुमार सरण किए हैं। सुशासन सिंह का जस पाठ गुरु साहब ने आप गुरु खास बख्शिश किया है। श्यामन आपका पता है शाम के ही रंभ होने सब तो पहला कीर्तन करने के भाई सतनाम जी साहब ठीक 7 बजे तक भाई साहब आरती कीर्तन नाम सिंह दारा सिंह धर्मा साहब चैनल जोड़ने वास्ते मान पाला करे 7 बजे कथा होगी 7:30 तक कीर्तन करे भाई विश्वास ने जथा कथा करे भाई नवनीत सिंह जी सुशासन सिंह ने बेनती 8:30 तक मारे निकी को दरंत मान लिया शाम के सारे कथा की वास्तव करके जीवन दिया सफला करो। सुहासा सिंह जी आप सिंह तुम्हें पता है गुरु का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है नॉर्थ हाल साउथ हाल की कंस्ट्रक्शन हो रही है सो इन्होंने डिवेलप किया है सुहासा सिंह जी संगतान पता है कि माया की बहुत लोड़ है पर हमारी बख्शिश हुई बेअंत प्रारंभ वालों बेअंत माया हमारे चरण हाथ रोई है वो बटभागे हैं जिन्होंने समय तो जागत में पछाणते हुए समझ देखते हुए अपन कमाइया सफल किया है। सो सारी सिख ने बेनती है कि जिन्हें अजे तक सेवा नहीं की उस सारी सिख जरूर कृपा करो आप अपने दसवंध कट के गुरु घर माया पेटा करके अपनी कमाइया सफल करो तो गुरु दुशियां प्राप्त करो अते जो कनेक्शन का काम चल रहा है इसमें असं सारे मिलकर परेशान शौकत संपूर्ण करिए। सुशासन सिंह जी आप सिंह बेनती है कि 10 मई है मदर डे आपने हाजिर पा लिया ने 11 मई तो लैके 17 तक कथा कानक भाई पिंदर पाल सिंह जी महान विद्वान वीर आप हर रोज सात सिंह जी हाजिर पाने की वार्ता करया करो। 12 मई है सरहंद फतेह जो बाबा बंदा सिंह ने बहादुर ने सरहंद फतेह करके उन्होंने लोगों ने दसिया किसी मलूमंद जुर्म किमें करीदा। सो 15 मई है संग्रांत जेठते महीने की आप संगत ने हाजिरी भरनी है नवे आए महीने जी कहना है इन्हें सुख शांति वास्ते सारे मिलकर अरदास करनी है। सो सात सिंह जी सो 17 मई है छोटा कलूकारा कानू आंड शंभ वाला गुरदासपुर जिले में सात सिंह जी उस समय दिया जो नजाकत है उसने असी ध्यान वेखीए तो एक बार जरूर अपने बंदे का मन जरा कम जाता है कि उस समय की सरकार का हुक्म सी कि कोई भी सिख कितने नजर नहीं होना चाहिए। सो इस वास्ते सिंह उस समय अपनी गुरसिखी गुरु दिया शाना शक्ति कायम रखने वास्ते जंगल का सहारा लेना पाया सी बाकी वो जो रुख सन फौजा सन जंगल अंदर नहीं सी जाती डरदिया सिंह को उन्होंने फिर यह जंगलों में एक पास अग ला के दूजे पास सारिया फौजा खड़िया करके सिंगलों उन्होंने वत्तवा जुर्म किया जिन्ना हो सकता है गुरु के लड़िया फौजा ने भी कारण की जिन्ना हो सके इन्होंने डट के मुकाबला किया। हर सिंह जी लोगों का जो छोटा घरूकार होया शहीद 10 से लेकर 12 हजार सैनिक सिंह बच्चे शहीद हुए सन जिन्होंने साढ़े वास्ते कुर्बानी की। सात सिंह जी जरूर याद करिए उन्होंने वास्ते असं महाराज चरण की अरदास करिए भाई साहब तैयार ने कीर्तन नाम करिए। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।

नानक जिस बिन घड़ी न जीवना, विसरे सर न बिंद, तिस स्यों क्यों मन रूसी है, जिस है हमारी चिंद। महला पंजवा। रत्ते रंग पार ब्रह्म कै, मन तन अत गुलाल, नानक विण नावै आलू दया, जिती होर ख्याल। पवड़ी

जिनी ठगी जग ठगिया से तुद मार निवाड़ा गुर पौजल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रियां वस कर दित्ते यो सतवंता साड़ा जित लायन तित लग दिया नह खिंचो ताड़ा जित लायन तितै लग दिया नह खिंचो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएदा

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय, अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है, जिस रिठे सर दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै। घर नौ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां, चालियां मुक्तियां हठियां, जपियां तपियां, जिन्हां आप जी दा नाम जपिया, वंड छकिया, देख चलाई ते गवाही देख के अनुडठ कीता, तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिन्हां सिंह सिंगणियां धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां उतरवाईयां तां न्यारियां नाल चिरवाए, सिखी किस्सा सुवासा संग निभाही, तिना समूह सिंह सिंगणियां पुचंगियां, सिद्धकवाना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु नाम चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब, तहां तहां रक्षा रियायत। देख तेग फतेह, बिरद की पैज, पंथ की जीत। श्री साहेब जी सहाय, खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विसा दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान। चौकियां झंडे बुंगे, जुगो जुगे अटल, धर्म का जयकार, खालसा जी बोलो जी। सिखां दा मन नीवा, मत उची, मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे गरीब नवाज, अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरधाम, जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणियां दे माण, निताणियां दे तान, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप जी दी पवित्र हजूरी विखे संध्या वेले दे दीवान सजाउणा कीते ने। सजे दीवाना विच अमृतमयी बाणी दे कीर्तन अते कथा विचार कीती है सतगुरु। होईयां भुल्लां बख्श देणियां जी, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव समूह संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा, संगतां दियां हाजरियां लेखे लाउणियां, पेटावां दा ते प्रवान करनियां, सरबत नूं अपने दरों करों नाम दियां दातां, सिखी सिदक भरोसा बख्शिश करना सतगुरु। सभना दे घरां विच सुख शांति बनाई रखनी, इतफाक बख्शिश करना, अपने पंथ नूं चढ़दी कला विच रखना सचे पातशाह जीओ। खालसा पंथ विच एकता इतफाक बख्शिश करना, गरीब नवाज कृपा करो, पवित्र हुक्मनामे बख्श के दीवाना दी समाप्ति दी आग्या बख्शो। सही प्यारे मेलो, जिना मिलिया तेरा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्त आखिए करते का हो विचारो, तित कर गावो सोहेला। सिवरे सृजन हारो तुम गावो, मेरे निर्भाव का सोहेला। हाउ बारी जित सोहेला, सदा सुख हो रहाओ। नित नित जीड़े संभालियन, देखेगा देवन हार। तेरे दाना कीमत ना पवै, तिस दाते कमन समार। संबत साह लिखिया, मिलकर पावो तेल। देव सजन सीसड़िया, जो होवै साहब सिंह मेल। कर करे हो पहुंचा सदरे नित पवन। सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन। रागा सा महला पहला, शे घर शे गुर शे उपदेश। गुर गुर एको वेश अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए। सो कर राख वडाई तोय रहाओ। विसवे चस्या कड़िया पहरा, तिती वारी माहो हुआ। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। राग तना श्री महला पहला, गगन मै थाल रव चंद। दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप मल्यालो पवन चवरो करे, सगल बंदराए फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खनना तेरी आरती। अनहता सुधवा जंत भेरी रहाओ। सह स्तम नैन नन नैन है तोहे कहो। सह समूर्त नायक तोही। सहस पद बिमल नान एक पद, गंध बिन सहस तब गंध चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, तिसद चानन सब मह चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जोत स्भावै सुवारती होए। हर चरण कवल मकरंद, लोभित मनो अंधन मोहे। आहि प्यासा कृपा जल देह नानक, सारंग कहो होए जाते तेरे नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरिया। मिल साधु खंडल खंडा हे, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। मन हर लिव मंडल मंडा हे, कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे। कर नडौत पुन वड्डा हे, रहाओ साकत हर साध न जाने। अतने अंत न हो मैं कंडा हे, ज्यों ज्यों चले चुबे दुख पावे। जम काल सह सिर डंडा हे, हर जन हर हर नाम समान है। दुख जन्म मरण पव खंडा हे, अविनाशी पुरुख पाया परमेश्वर। बहु शोभ खंड ब्रह मंडा हे, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे। हर राख राख उड़ वड्डा हे, जन नानक नाम आधार टेक है। हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बिनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाह। आगे बसन सोहेला, औद कटै दिन सुरैनारे। मन गुरमिल काज सवारे, रहाओ एहो संसार विकार। संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रस। कथ कथा तन जानी, जाको आए सोई बिहाजो। हर गुरते मने बसेरा।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे कार नौ निध्यावै ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। हे गरीब नवाज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जीओ आप जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है जी। अमृत वेले तो लै करके इस वेले तक आप जी ने अपने सिंघासन ते प्रकाशमान हो करके संगतां नूं दर्शन दे दारे बख्शिश कीते। सतगुरु आप जी दा कोटि कोटां शुकराना है जी। इस वेले दीवाना दी समाप्ति हुई है। आप जी दे सुख आसन दी सेवा सोहिला साहिब जी दे पाठ कीते ने। आप जी दे दर घर दे टहलियां पासों सेवावां निभाउंदियां होईयां भुल्लां बख्श देणियां जी। आप जी कृपा करो अपने सुख आसन स्थाना विखे चल के विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। रात सुख शांति नाल बतीत होवे। अमृत वेले फिर संगतां नूं दर्शन दारे बख्शिश करने जी। सही प्यारे मिलने जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ਕਰੁਣਾ ਬਿਸਾਰੀ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ ਰਾਖ ਪੁਰੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਈ, ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖੈ, ਇਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਹਿ ਪੁਨ ਬਹੁਦਾਨ, ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਬਿਓਹਾਰੀ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸਾ ਚਿਤਾਰੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਹੁ ਸਦਾ ਅਨੂਪ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਤ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹਿ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖਹਿ ਬਿਸਮਾਤ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚੱਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵ ਹੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵ ਹੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗਹੁ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਹੁ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨਹੋ ਬਿਸਾਰ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ, ਤੂੰ ਤਾਕਉ ਜਾਪ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਤਿਸ ਹੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਸਿਉ ਰਾਚ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਇਆ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤ ਲਭੇ ਹਰ ਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ। ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ, ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪਰਫੁੱਲੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਬਸ ਪੰਚਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਕਤਹੁ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਮੀਤ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹੋ ਤਾਪ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਬਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿਆਈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਕਬਹੁ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛੁ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਟਤ ਹੋ ਤੇ ਨਿਹਾਲ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਕਤ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ੁਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਧ ਬਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਮੰਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰਪਰ ਨਿਸਤਰੈ,
साध कै संग लगे प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संग गत पई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा बेदना जाना है जेता सुना है तेता बखियाना है साध की उपमा तेह गुण ते दूर साध की उपमा रही भार पूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊच ते ऊची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्राभ भेद ना पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेखाय एक सबिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल मह कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौ शोख ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंक कौ लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यों बसुधा को खोद को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मान होय प्रकाश जैसे तार ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पहया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कै होय सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा साध जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बोध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मान परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कै होय अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड भागी पाई आए ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाई आए ब्रह्म ज्ञानी कौ खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अध्याखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक उर तारै जो अंतर नाम सर्व मैं पेखै भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निसतार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पारस मन मह प्रीत निरंजन दरस परत्रे रूप ना पेख नेत्र साध की टहल संत संग हेत करन ना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद बिख्या पर हरे मन की बाशना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मध्ये को ऐसा आपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत हुवै नेह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा ने बाचे केवल भगत कीर्तन संग रचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल
ਆਪ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਿ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਓ ਵੈਸ਼ਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾ ਮਲ ਖੋਵੈ ਤਿਸ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਵੈ ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕਉ ਪਾਵੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਜੋ ਨਾ ਆਵੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਬੂਜੈ ਮੂਲ ਸੁਖਮ ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਅਸਥੂਲ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਪੈ ਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਰ ਤਾਰੈ ਪਾਸ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਦ ਪਾਥਰ ਕੋ ਤਾਰੈ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ਧਰਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮਦਾਸ ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਦਾਸ ਦਸੰਤਨ ਪਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਦਾਸ ਕਉ ਸਭ ਸੋ ਜੀ ਪਰੈ ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਬਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬੇਖ ਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਗ ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨਤ ਤਰੰਗ ਲਖੇ ਨ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਬਿਨਾਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਪਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁਬਿਧ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭ੍ਰਮ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀ ਸਰੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕਬਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਅਭੇਗ ਆਤਮ ਨੇ ਕੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸਰਮਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਹੇ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵ ਹੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪ ਜਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਭੂ ਮੰਡਲ ਕਈ ਕੋਟ ਸੱਸੀ ਅਰ ਸੂਰ ਨਖਿਅਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਸ਼ਤਰ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸ ਤਾਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰ ਸਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਾਖਯ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨਿਰੈ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵ ਹੈ ਮਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹਜੋ ਨੇ ਫਿਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਘਲ ਹੈ ਥੱਕ ਪਾ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਪੀਏ ਤਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ
जह जह भाणा तह तह राखे नानक सब किश प्रभ कै हाथे कई कोट पहे बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ कौ खो जंते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिन कौ मिल्यो प्रभ अविनाश कई कोट मांग है सत संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन कौ होए आप सो प्रसन्न नानक ते जान सदा तहन तहन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो विस्थार कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बहु भांत प्रभ ते होए प्रभ माहे समात ताका अंत न जाने कोए आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहार रह है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवा है अमर पय सद सद ही जीवा है कई कोट नाम गुण गावा है आत्म रस सुख सहज समावा है आपने जन कौ सास सास सुमारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय नानक तिस बल हारण जल थल मही अल सोए अष्टपदी करण करावन करण जोग जो तिस भावै सोई होग खिन मह थाप उथापन हारा अंत नहीं किश पारा वारा हुक्मे तार अतार रहावै हुक्मे उपजय हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखाय अपनी वडयाई नानक सब मैं रहया समाई प्रभ पावै मनुख गत पावै प्रभ पावै ता पात्र तरावै प्रभ पावै बिन स्वास्थ्य राखै प्रभ पावै ता हर गुण पाखै प्रभ भावै ता पतत उदारै आप करै आपन बिचारै दोहां सिरियां का आप स्वामी खेलै बिगसै अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानुख ते क्या होए आवै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ होए तां सब किछ ले जो तिस भावै सोई करे अन जानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचै भरमे भूला दै दिस न पावै परमे भूला दह दे सुतावै निमख माहे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिसे अपनी भगत दे नानक ते जान नाम मिले खेन मह नीच कीट कौराज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कशु न आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै जा कौ अपनी करै बखसीस ताका लेखा न गनै जगदीस जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करण करावण सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावै सोई फुन थियो कबहू ऊच नीच मैं बसै कबहू सोग हर करंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानके आप मिलावन हार कबहू निरत करे बहु भांत कबहू सोए रहे दिन रात कबहू महाक्रोध बिकराल कबहू सर्ब की हो तरवाल कबहू होए बहै बड़ राजा कबहू पेखारी नीच का साजा कबहू आप कीरत मह आवै कबहू भला भला कहावै ज्यों प्रभ राखै तिवही रहै गुरप्रसाद नानक सा चुका है कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मौन तहरी लावै ध्यान कबहू तट तीरथ इसनान कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक ज्यों भरमै परमिया नाना रूप ज्यों सुवांगी दिखावै ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै ज्यों तिस भावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोए कबहू साध संगत ए पावै उस अस्थान ते बहुर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मह जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सतगुरु बान सलोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिस कै अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुवान जो जाने मैं जो वनवंत सो होवत बिष्टा का जंत
ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੂਨ ਪਰਮਾਵੈ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਭਾਵੈ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ ਬਹੁ ਲਸ ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ ਕਿਸੈ ਨਾ ਬਤੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋਂ ਧਾਰੈ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਹੋ ਕੈਸੀ ਗਾਵੈ ਆਪਸ ਕਹੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕਿਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨਹਿ ਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਠ ਤਹਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਇਸ ਕੇ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਿਵੇਕ ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਵਿਸਥਾਰ ਸਭ ਕਛ ਉਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਉਸ ਤੇ ਭਿਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਥਾਂ ਥਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ ਆਪੁਨੇ ਚਲੇ ਤੋ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਖਿਆਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੀਨਾ ਕੋਟ ਮਧੇ ਕਿਨੇ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘਟ ਘਟ ਸੁਨੀ ਸਰਵਨ ਬਖਿਆਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਆਰ ਜਾ ਘਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਹਤੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਨ ਕੋਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਭੀ ਤਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਕਾਗ ਜਿਉ ਲਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਹਿ ਜਲੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੋ ਸ਼ਲੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨੀਚਾਏ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹਿ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਓਏ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਤਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਨ ਟਿਕਨ ਨ ਪਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਿਆਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਾਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਅਰ ਦੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਰਬ ਰੋਗ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮਹਿ ਦੁਖ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਉਸ ਕਾ ਭੀ ਹੋਏ ਮੋਖ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਤ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਉ ਡਾਨ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਉ ਸਭ ਤਿਆਗੈ
संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख ते तरै, संत के दुखी को नाही ठाउ, नानक संत पावे तां लए मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज ना पहुंचै, संत के दुखी कहो उद्यान प्रमाइय, संत का दुखी उजड़ पाइय, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ की सुनाहे, अपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पहावै तां लए उबार, संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईदन नहीं त्रपै, संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यों बुआड़ तेल खेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहै तो, संत का दुखी सद मिथ्या कहै तो, किरत निंदक का तुर ही पाया, नानक जो तिस भावै सोई थेया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिलै सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरै ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत कै दुख न त्रिष्टै कोए, जैसा भाव है तैसा कोई होए पया, किरत न मिटै कोए, नानक जानै सचा सोए, सब घट तिस क्यो करने हार, सदा सदा तिस को नमस्कार, प्रभ की उस्तत करहु दिन रात, तिसे त्यावहु सास गिरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा कर है तिस अपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से, सलोक तज हो स्यानप सुरजनाहो, सिमरह हर हर राय, एक आस हर मन रखाहो, नानक दुख परम पहो जाए। अष्टपदी मानुख की टेक ब्रथी सब जान, देवन को एक भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लाग आए, मारे राख एक आप, मानुख कै किश नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागै कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेहे जियो, नैनहो पेखो ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटहै पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करहे विचार, से तनवंत गने संसार, मान तान मोख बोलह हर मुखी, सदा सदा जन होते सुखी, एको एक एक पछाने तो तकियो सोजी जन, नाम संग जिसका मन मानया, नानक तिन्ह निरंजन जानया, गुरप्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जान हो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत, अन दिन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्थ मैं सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिस की कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस है न लागह दुख, जिस काओ हार प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डोलावै, जिस प्रभ आपुना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य मह आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद तत सब बूजिया, जब देखाओ तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई असथूल, नह किश जन्मै नह किश मरै, आपन चले तो आप ही करै, आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल मह आप, अनेक जुगत राच थाप उथाप, अभिनाशी नाही किश खंड, धारण तार रहो ब्रह्मांड, अलख अपेव पुरख परताप, आप जपाए त नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सो बावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत,
प्रभ के सेवक सगल उधारन, प्रभ के सेवक दुख बेसारन, आपे मेल लय कृपाल, गुरु का शब्द जप पहे निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनों कृपा करै बडभागै, नाम जपत पावह बिश्राम, नानक तिन पुरख कौ उत्तम कर मान, जो किश करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सहज सुपाए होवै सो होए, करणै हार पछाणै सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निधान उनहु बन आए, आपस को आप दिनो मान, नानक प्रभ जन एको जान, सलोक सर्ब कला भरपूर प्रभ, बिरथा जन नहार, जाकै सिमरन उदरीय, नानक तिस बलहार, अष्टपदी टूटी गांडन हार, गोपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अबिनासी प्रभ आपे आप, आपन की आकशु न होए, जे सौ प्राणी लोचै कोए, तिस बिन नाही तेरे किश काम, गात नानक जाप एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोहै, प्रभ की जोत सगल घट सो है, तनवंता होए क्या को गर्भ, जा सब किश तिसका दिया दरबै, अत सूरा जे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहतावै, जे को होए बहे दातार, तिस दिन हर जाने गावार, जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सो जान सदा आरोग, ज्यो मंदर को थामै थमन, त्यों गुरु का शब्द मन है अस थमन, ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरै, प्राणी गुर चरण लागत निस तरै, ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए बिगास, ज्यो महा ध्यान मह मार्ग पावै, त्यों साधु संग मेल जोत प्रगटावै, तिन संतन की बाशो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूर्ख काहे बिल लाइय, पुरब लिखे का लिखिया पाई है, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तिसा है चितार, जो काश करै सोई सुख मान, भूला काहे फिरहै अजान, कौन बस्त आई तेरा संग, लपट रहे ओ रस लोभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती घर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, ताज अभिमान ले हो मन मोल, राम नाम हृदय महतोल, लाद के पसंत है संगचाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल, तन तन कहे सब कोए, मुख उजल हर दरग है सोए, एहो वापार विरला वापार, नानक तां कहे साध बलहार है, चरण साध के तोए तोए पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की तूर करो इशनान, साधु पर जाइए कुर्बान, साध सेवा बड़ भागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए, अनेक बिघन ते साधु राख है, हर गुण गाय अमृत रस चाख है, ओट गही संत दर आया, सर्व सुख नानक ते हे पाया, मेरे तक को जीवा लनहार, भूखे को देवत आधार, सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे, सब किश तिसका ओ करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ ना होग, जाप जान सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मल एह करनी, कर कृपा जिस कौ नाम दिया, नानक सो जान निर्मल थिया, जाके मानक और गुर की प्रतीत, तिस जाने आवै हर प्रभ जीत, भगत भगत सुनिय ते हो लोए, जाके हृदय एको होए, सच करनी सच ताकी रहत, सच हृदय सत मुख कहत, सची दृष्ट साचा आकार, सच वरत साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जान सच समता, सलोक रूप न रेख न रंग केशो, त्रै हो गुण ते प्रभ भिन्न, तिसै बुझाए नानका जिस हो वैसु प्रसन्न, अष्टपदी अभिनाशी प्रभ मन मह राख, मानुख की तू प्रीत त्याग, तिस ते पर नाही किश कोए, सर्ब निरंतर एको सोए, आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सो जाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद, साध तेरे की चरणी पाओ, नानक कै मान एहो अनराओ, मनसा पूर्ण सरणा जोग, जो कर पाया सोई होग, हरन परन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर, आनंद रूप मंगल सद जाकै, सर्व थोक सुनिए करता कै,
राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्थ मैं भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जानै पूत सगल परोई आपु नै सूत सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जान दास नाम त्यावह से तेहो गुण मैं जाको परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए ऊच नीच तिसके अस्थान जैसा जन आवै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करै करंग नाना बिद कीनो बिसथार प्रभ अबे नासी एक ओंकार नाना चलित करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम कै संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत करम जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिस है सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जान जा कर दे प्रवेश सत निरत बूझै जे कोई नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिस की सृष्ट सो करने हार आवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक जो तिस पावै सो वर्तिया बिसमन बिसम पय बिसमाद जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राज जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाकै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी जन कै संग एक लिब लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत त्यावन हार आप सत सत सब तारी आपे गुण कारी शब्द सत सत प्रभ बकता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सरूप हृदय जिन मान्या करण करावण तिन मूल पछान्या जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान ते समान प्रगटाया भय ते निरपहो होए बसाना जिस ते उपजिया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ता कौ भिन न कहना जाई बूझै बूझन हार बबेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जानै संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखै निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारै नानक सो सेवक सास सास सुमारै अपने जन का पर्दा ढाकै अपने सेवक की सर पर राखै अपने दास कौ दे वडाई अपने सेवक कौ नाम जपाई अपने सेवक की आप पात राखै ताकि गत में तो कोई न लाखै प्रभ के सेवक कौ को ना पहुचै प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया निकी कीरी मैं काल राखै भस्म करै लस्कर कोट लाखै जिसका सास न काढ़ते आप ताको राखत देकर हाथ मानस जतन करत बहु भांत तिसके कर तब बिरथे जात मारे न रखै अवर न कोए
ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ, ਕਾਹੇ ਸੂਜ ਕਰਹੇ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿੜਾਣੀ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਕਿਸ਼ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ। ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਾਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ। ਬੋਲੋ ਜਸ ਜੇਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀ ਦਾਤ, ਕਰਹਿ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਜੋ ਹੋ ਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ, ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਏਕ ਨਾ ਜਾਨੋ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੇ ਹਜੂਰੇ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਜਨ ਪੂਰੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹੇ, ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵਾ ਹੈ, ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਛਾਡ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ, ਆਵਨ ਜਾਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਦ ਪੈਰਾ। ਸਲੋਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤ ਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਦਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਿਗਾਰ ਤੇ ਹਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋਰਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਾਹੈ, ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ। ਮਨ ਬੇਚੈ ਸਤ ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ। ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ, ਸੋ ਸਤ ਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ। ਸਰ ਬਿਨੇ ਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਏ ਕਹਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ ਭਰਮ, ਸਹਸਿਆਣ ਪੱਲਿਆ ਨ ਜਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਗਵੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤੀਆ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤ੍ਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਜਿਹ ਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਬੇਕ, ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁਚਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ, ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ, ਅਨੇਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰ ਹੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰ ਹੈ, ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ, ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ, ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹਿ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾੜ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਪਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ, ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥਿਨ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ,
थेत पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस स्रवन निर्गुण आप सर गुण पी ओही कलातार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगास साधक संग रच रचना अपनी काल तारी अनेक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाल बिन भजन बिखया सगली शार हर हर नाम कमावना नानक एहो तन सार अष्टपदी संत जना मेल करहु विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत बिसार रहौ चरण कमल हृदय में उरता रहौ करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहु नाम हर वथ एहु तन संचहु होवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखु मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन कौ चार कुंठ उठता वह सो तन हर सेवा ते पावह जिस सुख कौ नित बादशाह मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटाए हर अवखद लाए सर्व निधान मह हर नाम निधान जप नानक दरगह प्रवान मन प्रबोध हो हर कह नाए दैद सतावत आवै ठाए ताकौ बिगन न लागै कोए जाकै हृदय बसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाउ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सै पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित घर जाए बसै अबिनासी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कह जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवागवन मिटै प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरुदेव इयों रतन जन्म का होए उदाहर हर हर सिमर प्राण आधार अनेक उपावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद बिचारे हर की भगत करहु मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चाल सुते रहतना तू क्या लपटावा है मूर्ख मना सुत मीत कुटंब अरबनता इन ते कहो तुम कवन सुनाथा राज रंग माया बिस्थार इनते कहो हो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंभ झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना ना बिसार नानक पशुताना गुर की मत तू लेह आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करहु मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखु मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जप हो अवरा नाम जपा वाहौ सुनत कहत रहत गत पा वाहौ सार भूत सत हर को नाउ सह सुबाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतरस मैल बिन सजाए हो मैं बेखु फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाहल शाड़ सियान पसगली मना साध संग पावह सच तना हर पूंजी सांच करहो व्यवहार इहां सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एक के गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर रहे ओ प्रभ व्याप अनेक विस्थार एक ते पहे एक आराध पराशत गए मन तन अंतर एक प्रभरता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगों तूर पार ब्रह्म मेरे सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल सिंह लागै प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको एक ओट एको आधार नानक मांगै नाम प्रभ सार
प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावै बिरला कोए, जिन चाख्या से जन तृप्ता ने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुपर परे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग, परे सरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास आन दिन लिवलाग, बड़भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन कहो प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुकत जन भया, जन मरण दुख भ्रम गया, ऐश पुन्नी सरदा सपूरी, रव रहया सत संग हजूरी, जिसका सा तिन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे काल ना भान, सो क्यों बिसरै जे किया जाने, सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिख ते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांडै, गुरपुरै तत इह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जप हो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावह, आप जप हो अवरह नाम जपावह, भगत पाए तरिय संसार, बिन भगती तन होसी शार, सर्ब कल्याण सुख निद नाम, बूढ़त जात पाए बिसराम, सगल दुख काहो वतनासो, नानक नाम जप हो गुणतास, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर ही सुआओ, नेत्रों पेख दर्श सुख होए, मन बिगसै साध चरण धोए, भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावै संग, एक बस्त दीजै कर मया, गुरप्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्ब समाए, प्रभ बखशंद दीन दयाल, भगत वशल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपाए सो होए पुनीत, भगत पाए लावै मन हीत, हम निर्गुनियार नीच अजान, नानक तुमरी सरन पुरख भगवान, सर्ब बैकुंठ मुकत मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनक राज भोग बडयाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बह भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सो करने सोभा धनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहु निवास, सर्ब सुख नानक प्रगास, सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, आपन किया नानका, आपे ही फिर जाप, अष्टपदी, जब अकार एहो काशना, दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता, जब तारी आपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरक सोग कहो किसै व्यापत, जब आपन आप, आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम, आपन खेल आप वरती जा, नानक करने हार ना दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत कहो किस कहो गनी, जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुबाए, ताव सेव साकत कहो के तठाए, जब आप है आप, अपनी ज्योत तर है, तब कवन निडर कवन कत डर है, आपन चले तो आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार, अभिनाशी सुख आपन आसन, तह जन मरण कहो कहा बिनासन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो हो किस होए, जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त कैस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर आगा दे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, अपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्बान, तह कौन कौ मान कौन अभिमान, जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शाल शिदर लगत कहो कीस, जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किस है भूख कवन तृपतावै, करण करावन करने हार, नानक करते का नाहीं सुमार,
जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई। जह सर्ब कला आपे प्रवीण, तह वेद कतिब कह को चीन। जब अपन आप उरतारे, ताओ सगन आप सगन कहा बिचार। जह अपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिय चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हो आप। जह अशल अशेद अभेद समाया, उहां के सह व्यापत माया। आपस कौ आपे आदेश, तेह गुण का नाही प्रवेश। जह एक एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जह अपन आप पतियारा, तह कौन कथा है कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊच ते ऊचा, नानक आपस को आपे पहुचा। जह आप रचियो प्रपंच आकार, तेहो गुण मैं कीनो बिस्थार।

ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਸਹਿ ਸੁਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਕਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈ ਦੇ ਥਕ ਪਾਹੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਉ ਅਪਾਰੂ ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੂ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੂ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਸਨ ਧਰੇ ਪਿਆਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰੂ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕੀ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਤਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਗੁਰਿਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ ਜੀਤੀ ਸਿਰ ਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਯਾਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੀ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਜੈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲਾ ਆਕਾਰ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਸੁਣਿਆ ਮੁਕਸਾਲਾ ਹਨੁਮੰਦ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਅੜਸਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹੁ ਸੁਣਿਆ ਹੱਥ ਹੋਇ ਸਗਾਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ
मन्ना मुह चोटा न खाए मन्ना जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जान है मन कोए मन्ना मार्ग ठाक न पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंधु ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कुए मन्ने पावे मुख द्वार मन्ने परवार ऐसा धार मन्ने तरह तारे गुर सिख मन्ने नानक पवे न भिखु ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कुए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गहमान पंचे सोह दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख ताबर क्या जिन सूत जे को बुझै हुवे सच्यार तबले उपर किता पार धरती होर परै होर होर तिस्ते भार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बड़ी कलाम एहो लिखा लिख जाने कोए लिखा लिखिया किता होए किता तान सवाल्यो रूप किती दात जाने कौन कूत किता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाऊ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरमो पक्षार असंख मोह लिवलाई तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख अलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पाक काहे असंख निंदक सिर करह भार नानक नीच कह विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर भार हो अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन्हे लिखे तिस सिर नाई जि फरमाए तिव ति पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावे नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिये हथ पैर तंदे पानी तोते उतरस के मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए भरिये मत पापा कै संग ओ तो पै नावे कै रंग उन्नी पापी आखण नाही कर कर करना लिख ले जाहु आपे बीज आपे ही खाहु नानक हुक्मी आव हो जाहु तीर्थ तप दया दत दान जे को पावे तिलका मान सुने मने अमन कीता पाऊ अंतरगा तीर्थ मलनाऊ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुति माहु कवन जित हुआ आकार वेल न पाईया पंडती जी हुए लेख पुराण वक्त न पायो कादी आजे लिखण लेख कुरान थित वार न जोगी जाने रुत माहु न कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई किव करे आखा किव साला ही क्यों वरनी क्यों जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा कहुवै नानक जी को आपौ जाणै अगै गया न सूहै पाताला पाताल लख आगासा आगासु ओड़ कोड़ कपाल थके वेद कह निकवात सहस अठारह कैन कते बासलु एक तात लिखा हुए ता लिखी है लिखा हुए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही ती सुरत न पाईया नदियां तैवाह पवह समुद न जानिय है समुद्र सहा सुल्तान गिरह सेठी माल धन
कीड़ी तुलना होव नी जे तिस मन हुना विसरहे। अंत न सिफती कह न अंत, अंत न करने दे न अंत, अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापै क्या मनमंत, अंत न जापै कीता आकारु, अंत न जापै पारावारु, अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे। इहो अंत न जाने कोई, बहुता कही है बहुता हुए। वड्डा साहिब ऊचा था ऊचे, पर ऊचा ना होए, बड़ ऊचा हुए कोए, तिस ऊचे को जाने सोए। जीवड़ा आप जाने आप आपु, नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया न जाए, वड्डा दाता तिल न थमाए। केते मंगे जूद पार, केतिया गणत नहीं विचार, केते खप टह वेकार, केते लै लै मुकर पाहे। केते मूर्ख खाही खाहे, केतिया दुख भूख सद मार, एह पेदा तेरी दातार, बंद कलासी भाण होए, हो राख न सकै कोए। जे को खाए के आखण पाए, ओ जाने जितिया मुँह खाए, आपे जाने आपे दे कैसे पे के। जिसनु बख्शे शिवसा लाहा, नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण मुल व्यापार, मुल व्यापारी अमुल भंडार। अमुल आवह मुल लै जाहे, अमुल पाए अमुला सुमाहे, अमुल धर्म मुल दीवान, अमुल तुल मुल परवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल कर्म मुल फरमान, मुलो मुला क्या न जाए। आख आख रहे लिवलाए, आखह वेद पाठ पुराण, आखह पढ़े करे वख्यान, आखह बरमे आखह इंद, आखह गोपी तै गोविंद, आखह ईसर आखह सिद्ध, आखह गीते कीते बुद्ध, आखह दानव आखह देव, आखह सुर नर मुंजन सेव कीते, आखह आखन पाहे। केते कह कह उठ उठ जाहि, ते कीते होर करे ताक न सकै के। जीवड़ भावै तेवड़ होए, नानक जानै साचा सोए। जे को आखै बोल विगाड़, तां लिखिया सिरगावा रंगावार। सो दर के हा सो कर के हा, जितवै सर्व संभाले। वाजे नादन एक असंका, केते वावन हारे, केते राग भरी सो कहीन, केते गावन हारे। गावै तोनू पौन पानी बैसंतर, गावै राजा धर्म दुआरे, गावै चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे, गावै इंदें दासन बैठे देव ते अंदर नाले। गावै सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावै वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सिर, जुग जुग वेदा नाले। गावह मोहनिया मन मोहन, सुरगा मच प्याले, गावन रत्न पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले। गावह जोध महाबल सूरा, गावह खानी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे। से तुदनु गावह जो तुद पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले, होर किते गावन से मैं चेतनाव, नान क्या विचारे। सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई, है पीवो सी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाहु साहा पात साहिब नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख शर्म पचोली, ध्यान की करे बिभूत, किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत, आदेश सह आदेश आद नील अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण। घट घट वाजह नाद आप नाथ, नाथी सब जाकी रित सदवरा साध। संजोग जोग कार चलावह लिखे आवै भाग, आदेश सह आदेश आद नील अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेश। एका माई जुगत वे आई किंचेले परवान, एक संसारी एक भंडारी कलाए दीवान। जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान, ओह वेखै उन्हां नदर न आवै बहुता इव विडान। आदेश सह आदेश आद नील अनाथ अनाहत, जुग जुग एको वेस। आसन लोए लोए भंडार, जुग छपाया सो एक वार, कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश सह आदेश आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। एक दूजी बहु लख होहे, लख हो वै लख वेश, लख लख गेड़ा आखी एह एक नाम जगदीश। एत राहे पथ पवनिया चढ़िया होय अकीस,
सुन गल्ला आकाश की आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखन जोर छुपै न जोर जोर न मंगण दे न जोर जोर न जीवन मरण जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुक्ति छुट्टै संसार जिस हर जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम नेक अनंत करमी करमी हुए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवार नदरी करम पवै निशान कच भकाई उथै पाए नान गया जापै जाए धर्म खंड का इहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम केते पवन पाणी वै संतर केते काण महेश केते बरमे काड़त कड़ी यह रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मन केते केते रत्न समुंद केतिया काणी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नानत ज्ञान खंड मैं ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जी को कह पिछे पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरां सिद्धा की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोत महाबल सूर तिन मैं राम रहा भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे नाहे मरे न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै केलो करै आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै तंत अनंत तिथै लो आकार जिव जि हुकम तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सारु जत पहारा धीरे सुनियार अहरण मत वेद हथियार भौख लागन तपताऊ भांडा पाओ मृत ढाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरप मात दिवस रात दुए दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म दूर करमी आपू अपनी के नेड़े के दूर जिने नाम ते आया गए मशक्कत कालो नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिने नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं छपै छंत प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जाति अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे अचल मूर्तन पव प्रकाशम तुज कही जय कोट इंद्र इंद्रानुसाहि साहान गनि जय त्रिपवन महीप सुर नर सुर नेत नेत बन त्रिन कहत त्वै सर्व नाम कथै कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रिया छंद

नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग जीते नमस्तंग पीते नमस्तंग बाहे नमस्तंग टाहे नमस्तंग नीले नमस्तंग अनादे नमस्तंग छेदे नमस्तंग गादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सुक नमस्तंग निक नमस्तंग भूते नमस्तंग जूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्परमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्धूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग लोके नमस्तंग शोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अतापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग गाहे नमस्तंग बाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग प्रभुगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग पंगे नमस्तंग गम्ये नमस्तस्त रम्ये नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग जाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त जब्बे अदेशंग अदेशे नमस्तंग पेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वपूपे नमो सर्वकापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवै नमस्तंग पेवै नमस्तंग जन्मे नमस्तंग शुभनमे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग वर्णे नमस्तंग मरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमो सत्तवन्दे नमस्तं निर्साके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहिमे नमस्तं करिमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वशोकं नमो सर्वपोकं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चाचरी चंत्व प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेक है अनाम है अकाम है अधेय है अपेय है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजेय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपांज है अच

महंत हैं, अलीक हैं, नरसिक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अभूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबा हैं, अगा हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिरेक हैं, पुजंग प्रया छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेकी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे निरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्ये नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ति बेपूते कलंकंग विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाताया पेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो

नमस्तं इष्णानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परनाशी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध करता अदो उर्ध अर्धं अगंग ऊग हरता परम

उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल डाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नरेक आद पुरक दार मूर्त जौनाद अशेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए।

अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव भेव ना जान ही जे भेद और कतेव रूप रंग ना जात पात सो जान ही के जीव तात मात न जात जाकर जन मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही

सर विश्व रच्यो सोयाम भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत भूत लख अपेश अंग राग ना रंग जाके जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुष्ठत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन अभंग नात्मिक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन भेख सर्व शास्त्र न जानही जे रूप रंग रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भगत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र नया वही व चित मद पार छंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग

भूत अंग आभा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा परनाढ्य अंडन बाढ़ चाचरी चंत प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्नामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी चंद न सत्रह न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य अकृश्य भगवती चंत्व प्रसाद कथते के अचिज देशय के अभिज पेशय के अगंज कर्म के अभंज परमय के अभिज लोक के आदित्य सुख के अवतूत वर्ण के विभूत कर्ण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के बर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद अदेव है के आपु अपेव है के चित्रंग वहीन है के कै अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रेहा कै कि पाक बेअब है के गै बुल गैब है के अफुल गुना है के साहन सा है के कारण कुनिंद है के रोजी ध्यान है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र घंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैवं प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं कलिमे के परमं फहिमे के अकल अलमे के साहिब कलामे के हुस्नल वजू है तो मामूल रुजू है हमीसल सलामे सलीकत मुदामे घनी मुल से कष्ट।

हैं, अपंग हैं, अजीजुल निवाज हैं, गनी मुल्की राज हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुक्त विभूत हैं, प्रभुक्त प्रभा हैं, सुयुक्त सुधा हैं, सदैवं स्वरूप हैं, अपेधी अनूप हैं, समस्तों पर राज हैं, सदा सर्वसाज हैं,

मित्र पंगी त्रिकाम मित्र बरगंग त्रिबाद्य अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुराग त्रिपुगत स्वरूप हैं अचिज हैं अछूत हैं के नरकंग प्रणास हैं पृथ्वल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विपुगत स्वरूप हैं परयुक्त अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विपुगत प्रभा हैं।

अभय है, अभूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंध है, बंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनित है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चिरपट छंत्व प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणंग, सर्वंग त्राणंग, सर्वंग कर्मंग, सर्वंग धर्मंग, सर्वंग युक्ता, सर्वंग मुक्ता, रसावल छंत्व प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमातं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात

एक रहीम है। समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है के नरकं प्रनाश है बहस्तुल निवास है के सर्वल गवन है हम इसल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है अधिशल अलेख है अमिशल अपेक है जमीनुल जमा है अमिकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमितो बेपूत है के मित्त

हर बर अगंज, हर नर पर भंज, अनगन प्रणाम, मुनमन सलाम, हर नर अखंड, बर नर अमंड, अनुपवनाश, मुनमन प्रकाश, गुनगन प्रणाम, जल थल मुदाम, अंचिज अंग, आसन अपंग, उपमा अपार, गतमित उदार, जल थल अमंड, दिस्विस अपंड, जल थल महंत, दिस्विस बेअंत।

चित चरण नाम अनछिज गात अजिजना बात अनझंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनडट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अनब्रन

परमेश्वर है, कल कारण है, सर्ववारण है, त्रित के करण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वंपर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, कलखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, जपा जप है, थपा थप है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, धरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, जपा कृत है, अमृता मृत है, नर नायक है, कलकायक है, विश्वंपर है, करुणालय है, नृप नायक है, सर्पायक है, पावपंजन है, अर्गंजन है, रिप

नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रिय नादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनाम्य त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज पंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम गाह अटाह अनाथ परमाथे अजूनी अमूनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रया चंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासी अगंजुल नामे समस्तुल निवासी निरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विपूते सदा सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासी करिमूल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजायब गनिमे हरियं करियं करिमूल रहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते स्वयं पव सुभं सर्वदा सर्वजुगते।

सहाय, दुष्ट दोखते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल विक्षत देह को हरता, दुष्ट दोखिन को छय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल। सुने गुंग जो याहे सुरस न पावई, सुने

सत्संग जी, बोलो जी, वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास पोधिपाशे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय भयंकर कुरते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर कारण उन्होंने आवैताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाची ने पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पारदार दाते अंतर के खालसा से बोलो जी वाहे गुरु। ग्रीवनवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहब जादे चाली मुक्ते हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपया बन चकिया दे चलाई ते वाही दे कनेट कीता तेना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दाते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपड़िया लवाइया चरखड़िया से चले आ रहे न चलाए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म ने आ रहा किसी तरीके सत्संग निभाया तिना की कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्त समय गुरुद्वारे का ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता वै चित आवण का सद का सर सुख हो है। जहां जहां गुरु खालसा साहब आए देख देख की फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पद के रखे आप वाहेगुरु। गुरु गरीब नवाज पंथ सदा सहाय दतार जियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब से होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तो आप जी पंथ नूं विछोड़िया गया है उन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभालदा तां अपने खालसा जी नूं बख्शो ये नोटियां दी ओट गुरु ने आसरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ दतार जियो दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावे ताने रास। हे गरीब नवाज जी आप दे चरण कमला जरदास सिंह ते आपने बख्शिश कीती है अमृत वेले प्रकाशवान हुए सकदन दर्शन कर दे के निहाल दतार जियो। गरीब नवाज जी बख्शिश करो बेहत बाणिया के पाठ हुए एस वे रागी सिंह ने आपके चरण जासा की वादे कीर्तन कीते ने विद्वान वीर ने अज हुक्मनामे की कथा उचार की गरीब भाई कृपा करो वहीं भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सच कर प्रवान गुरबाणी का भाव सारिया संगत हिरतानी कृपालता करो जी अगो तो शोध से पुत्र बाणी उचाली बार बुद्धि बख्शिश करो। गरीब नवाज इस खुशी आप जी दख्शिया दातों में पुत्र कड़ाव शाही देगा तैयार करके हाज दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सा संगत की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखिया बख्शिश करो जी दतार कृपा करो आप जी बख्शिया दातों जो लंगर चुट सवारियां प्रबंध करनी गीव आज कृपा करो दतार जी बख्शिश करो खालसा पंथ से कौम एकता सुभाग प्यार जी बख्शिश करके सतदास बख्शो चानना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शिश करो हर मैदान जवान फतेह बख्श वादा करो जी। गुरु गरीब नवाज आप चरणा सेवा कर रहे सारे टहरिया संघा सिंघणियां तंदुरुस्ती बख्शो चाडी कला बख्शो अते सदा ही इसे तरह अपने चरणा सेवा की भावन बख्शी वादा करो। गरीब नवाज अमृत वे तो लैके दरते आई हैं साफ संगत हाजरी दर प्रवान करो घड़ियां लेके लाओ संगतों का दरते तेरह रुपेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। गरीब नवाज कृपा करो दूर दराज कार बैठिया लाइव कथा की शरण कर रही हैं सारे संगत हाजरियां प्रवान करो घड़ियां लेके लाओ तो तारा अपने बख्शी की संगत ने बख्शे ने संगत आपके चरण धन्यवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा सिंह दस संगत माया पेटा चरण प्रवान करो बच्चे अपनी कमाइया सफल करो कार्य वाज बोले तार सब संगत दुभकामना पूरी करो जी तार मेरा लग रहा हो कृपा करो सेवा प्रवान करो पूरा चुका की माफी बख्शो दार पितर गुरु में बख्शे प्रंत लड़ी वास्ते आस्कार करने आगा बख्शो शुद्ध से पुत्र सेवा रानी कृपा करो रहते कार सवार के चरण तुरादी बनाओ सही प्यारे मेरे दिन अपने आप का नाम देता नानक नाम चढ़ती करा तेरे भाने। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या भई अकाल के तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे
जो प्रभु को मिल भोज है खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई ख्वार ऐसा मिलेंगे बजे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े से उतरे पा जो शरदा कर सेव दे गुरु पाले उतारन हा

ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड़ा सतगुर नानक, जिन काल राखी मेरी। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सुख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी। सतनाम

मैं हर हर खर्च लया बन पल्ले, मेरा प्राण सुखाई सदा नाल चले, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया हर ने

करहु प्रतपाला। मेरा मात पिता गुर सत गुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद न आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे। हर हर दया करहु गुर मिलो, जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा। हर गुण पढ़िया हर गुण गुणिया, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सत संगत हर गुण गाए, जग

जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो, मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरा मन पाणी, हर हर अमृत हर मन भावै, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटा खावै, बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मै

मल तूवा मिल हर जन हर रस पीचे जियो सतगुर दाता नाम दृढ़ाया वडभागी गुर दर्शन पाया अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरै अमृत लीचे जियो हर सत संगत सत पुरख मिलाई है मिल सत संगत हर नाम ते आई है नानक हर कथा सुनी मुख बोली।

बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हौ कोली जियो कोल कमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ। तेरा मुख

पल छसा न विछुड़ा, जन नानक दास तुम्हारी जियो, हो को लीजियो कुल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारी जियो रहाओ। राग माज महला पंजवा, सारुत सुहावी जित

कोट जना जाके पूजह पैरा, गुरमुख हृदय जाके हर हर, सोई भगत एकाती जियो, अमोग दर्शन बेअंत अपारा, वड समरथ सदा दातारा, गुरमुख नाम जपिए तित तरिए,

देहु प्यारे, आए पया हर तीरे द्वारे, दर्शन पेखत मन आघावे, नानक मिलन सुपाई जियो, माज महला पंजवां। दुख तदे जा विसर जावे, भुख व्यापे बहु विदतावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवै दीन दयाला जियो, सतगुर मेरा वड समरथा, जी संभाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हौ पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो, बारिक

सतगुरु पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रसाला जियो, माज महला पंजवां। लाल गोपाल दयाल रंगीले, गहर गंभीर बेअंत गोविंदे, ऊंचा था बेअंत स्वामी, सिमर सिमर हौ जीवा जियो, दुख भंजन निधान अमूले, निर्भउ निर्वैर अथाह अतुल।

हर रंग गोपाला, ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मन तृप्तायन, गुरमुख अमृत पीवा जियो, दुख सुख प्यारे तुद ते आई, एह सुमत गुरु ते पाई, नानक की धर तू है ठाकुर, हर रंग पार परिवा जियो, माज महला पंजवा, तन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया, सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया, सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया, तन मूरत चसे पल घड़िया।

ज्ञान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जियो, अंतर बाहर तेरी बाणी, तुद आप कथी तै आप वखाणी, गुर कहया

सब किछ लेना, छत्ती अमृत भोजन खाना, सेज सुखाली शीतल पवना, सहज केल रंग करना जियो, सा बुद्ध दीजै जित विसरह नाही, सा मत दीजै जित तुद ते आई, सास सास तेरे गुण गावा, ओट नानक गुर चरना जियो, माज महला पंजवा, सिफत सालाहन तेरा हुक्म रजाई, सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई।

तेरे मन पावे, तू संतन का संत तुम्हारे, संत साहिब मन माना जियो, तू संतन की करह प्रतपाला, संत खेल है तुम संग गोपाला, अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो, उन संतन कै मेरा मन कुर्बानी, जिन तू जाता सो तुद मन पानी, तिन कै संग सदा सुख पाया, हर

नाम निदान तिसह प्राप्त जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त अगाना जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना तिसह प्राप्त हर हर नामा जिस मस्तक पा गीठा जियो हर एक हथ आया बरसाने बहु तेरे तिस लग मुक्त भए कनेरे नाम निदाना गुरमुख पाईए कहो नानक विरली डीठा जियो माज महला पंजवा नित सिद्ध रिद हर

दर्शन पेखत भय पुनीता, सगल उधारे भाई मीता, अगमय गोचर स्वामी अपना, गुर कृपा ते सच त्याई जियो, जा को

अनद भया निकसी सब पीरा सगल बिना से दरदा जियो जिसका अंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा सत करे जिन गुरु पछाता सो काहे काओ डरदा जियो जब ते साधु संगत पाए गुर भेट

तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे, नानक दा सदा गुण गावे, एक पूरी नदर निहालिए जियो। माज महला पंजवां।

भगत जीव है गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मिटावे, आस मनोरथ पूर्ण होवे, भेटत गुर दर्शाया जियो, अगम अगोचर किच मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्या वह ज्ञानी, खुदी मिटी चुका पुहलावा, गुर मन ही मह प्रगटाया जियो, अनद मंगल कल्याण निदाना, सुख सहज हर नाम वखाना,

आओ साजन संत मीत प्यारे, मिल गाव है गुण अगम अपारे। गावत सुनत सबे ही मुक्ते, सो त्याइए जिन हम किए जियो। जन्म जन्म के किल विख जाव है, मन चिंदे से फल पाव है। सिमर साहिब सो सच स्वामी, रिजक सब सकौ दिए जियो। नाम जपत सर्ब सुख पाइए, सब भौ बिनसै हर हर त्याइए। जिन सेविया सो पार ग्रामी, कारज सगले थिए जियो। आए पया तेरी शरणाई, ज्यों पावै त्यों लहे मिलाई।

0: ऐसी जगह ब्रह्मंड विच नहीं है जिथे तुहाडी मौजूदगी ना होवे और जिथे तुहाडी मौजूदगी नहीं है वो जगह ही नहीं है। जाप साहब की बाणी कितने वड़े वड़े गुणा नू साडे सामने खोल के रख दी। तुसी परम रूप दे मालक हो, परम शक्तियां दे मालक हो, परम शक्तियां दे मालक हो। नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्ध। हुण जोगी ते कहने असी बड़े वड़े जोगी हैं, तो सतगुरु जी ने कहता तुसी कादे वड़े जोगी हो। गलनी जोग ना होई, जोग ना खिंता, जोग ना डंडे, जोग ना पसम चढ़ाइए, जोग ना बाहर मड़ी मसाणी, जोग ना ताड़ी लाइए, अंजन माहे निरंजन रही। उस निरंजन नु पाना है जेड़ा कालक तू रहत है, माया दे प्रभाव तो परे है। ते खालसा माया दे प्रभाव तो परे होके खालसा हो सकता। उदे कुल नवाबी आवे ठुकरा दिंदा है, वो दिल्ली दे तख्त 18 बारी कब्जा करके कब्जा छड़े आंदा। साडे वर्गे कई कहंदे ने चंगा कमाल दे बंदे कब्जा होया सी छड़ता। जिन्हां दे अंदर गुरबाणी वसी है, जिन्हां ने गुरबाणी जीवी है, जिन्हां ने गुरबाणी दे अनुसार उन्हां ताकतां नूं पाया है, वह गुरबाणी नूं समर्पित ने, क्योंकि उन्हां दे अंदर भरपूर तरीके नाल सतगुरु गुरु नानक साहब ने वसा दिता है। राज ना चाहूं मुकत न चाहूं, मन प्रीत चरण कमलारे ऐसा प्रीत। क्योंकि गुरु नानक आप निरंकार कलाकार है, ये मैं नहीं कह रहा, भट्ट कह रहे हैं। भट्ट साहबान तू पुछो, भाई गुरदास जी को पुछो, भाई लहड़ा जी को पुछो, बाबा अमरदास जी को पुछो, जिन्हां नूं गुरु नानक सतगुरु ने सतगुरु बना दिता। मेरे सतगुरु जी प्रीतम जी गुरु नानक सतगुरु जी दसवें जामे विच मैनूं इह गल समझा रहे ने, तुसी दूसरे जोगियां दे पिछे क्यों भजे फिरदे हो, क्यों नहीं उन्हां जोगियां दा मालक जिहड़ा सारी सृष्टि दा मालक है, इन्हां ते अपने कपड़े लाए ने, उन्हूं ते कपड़े दी लोड़ ही नहीं है। इना ते राख मल के अपने आप नूं प्रूफ करना है, उन्हूं तो प्रूफ करन दी लोड़ नहीं, उन्हूं राख मलन दी लोड़ नहीं। वो सिद्धिया सिद्धिया दा मालक है, और जेड़ा उस नूं जपदा है रिधियां सिद्धियां पिछे ही रखदा है, वो अगे नहीं करके रख लेता कि मनु मिल गया हुणे नहीं वरतो करिए। बाणी जपी है धन मिल गया है, हुण इस राही किसे नूं नीवा दिखा दे। हर एक शय तो निर्लेप होंदा जाता है जब गुरबाणी विच गुरसिख दा मन रचदा जाता है, रंगिया जाता है। ताही सतगुरु जी कहंदे ने जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरत। दुनिया के ताकतवर बड़े ओलंपिक विच फिरदे होणगे, कई राजे ताकतवर होणगे, लेकिन खालसे की ताकत जिहड़ा भी देखता है वह खुंडियां कृपाना भी तोपा मुंह मोड़ दी। तोपा के चक्के टुट जाने अपना मोढ़ा ला के तोपा भी चला देंगे। सोचण वाली गल है कि ऐसी दुनिया के विच किहड़ी शह गुरु नानक ने तैयार कर दिती, जिहड़ी बाणी दे राही उसके अंदर भरपूर मात्रा भी जीवन जीण की भी आस बन गई, तो जीवन निछावर करन दी भी आस बन गई, जीवन का आनंद लैण दी भी आस बन गई, तो जीवन नूं कुर्बान करन दी भी आस बन गई। नमो राज राजेश्वरं परम वृद्ध। राजियां दा राजा क्योंकि परम रूप है, तो तेरे वर्गा संसार विच कोई जोगी नहीं, तेरे वर्गा कोई राजा नहीं, तेरे वर्गा कोई प्रकम प्रचंड विद्वान नहीं, ते तेरे वर्गा वृद्धे का मतलब है कि तेरे वर्गा कोई प्रकर्मी हाकम नहीं, बड़ा हाकम नहीं, दुनिया का हाकम ते किसी नू दे के ले लेंदा, दुनिया के राजे टैक्स लेके किसी नू कुछ दे दे, लेकिन तू किसी को लेके किसी नू नहीं देंदा, सब नू देंदा है, किसी तू लेंदा नहीं, किसी नू मोड़वा ही नहीं कहता मैं तेनू दिता ते तेरे उत्तों लेना। इथे ते धी जे मां नू देवे, मां सब कुछ दे देवे, धी मां नू देवे ते मंगदी वापस दे मां, प्यो सब कुछ पुत्र नू दे देवे, लेकिन पुत्र कहिंदा लिया बापू मैं तेनू पैसे दिते ही, तेनू क्यों दिया। संसार दी सोच नू छड के जद निरंकार दे सफर नू तुरदे हां ते सानू अपना आप होमे नू गुवाणी पैंदी, अपने अंदरू होमे मारनी पैंदी है। अगली विचार कल दे दिन करांगे। सत्कारयोग भाई साहब कीर्ति जथा आ चुका है, बाणी पढ़दिया विचार पेश करदिया अनेकां भुलां हो गईयां होणगीयां, अनजान जाण के क्षमा करनी, अरदास करनी सतगुरु जी, जिन्हें भी बचन विचार संगतां नाल करदे हां अपने जीवन विच टालण दा बल बख्श, भुलां नूं बख्श के फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: खालसा
0: वाहिगुरु जी
1: फतेह।

0: सतगुरुजी दी पावन पवित्र तनगी गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्रसाद सिंह जीओ प्यार साहब आसीस बख्शिश करदे हां, एकाग्रता बख्शिश करदे हां, गुरु दी बख्शिश गुरु फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
0: हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख लिख नहीं आवे। आओ उस महान बख्शिश जिहड़ी सानू कीर्तन दे रूप मालिक ने बख्शिश कीती है प्राप्त करन लई, उस रस नू माणन दे लई जिहड़ा रस तुसी रोजाना ही अपने उस पावन स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब तो दूर बैठे टीवी राही श्रवण करते हो, इं महसूस करते हो कि असी धन गुरु रामदास पिता की गोद श्री दरबार साहब विखे बैठे हुए हैं। उसी आनंद विच आपां ने जुड़ के इत्थे कीर्तन करना है, तुसी सारे ने नाल नाल सहयोग बख्शिश करना है, रल के कीर्तन करना है, सारे ने नाल नाल रसना दी हाजरी भी लवानी है। गुरु बख्शिश करे, कृपा करे। आओ गुरु रामदास पातशाह जी कृपा करन, आप अपना मेरा भरिया हथ रख के रसना ते बैठ के अपने इस कीर्तन की सेवा लैण। कुछ मिनटा लिया और रल के वाहगुरु का सिमरन करिए, उस तो उपरंत आपकी शब्द श्रवण करोगे। तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम।

वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है बच्ची दे पिता जी नू कि ओ बच्चे दा पल्ला बच्ची नू पकड़ाउणगे। रागी सिंह पल्ले दा शब्द गायन करनगे। बेनती है जी पल्ले दी रस्म अदा कीती जावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुर दर्शन देख निहाली सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ।

थोड़ा सा समा भाई साहब जी, भाई निरंजन सिंह जी, जिन्होंने सब दे समय की वंड पाई है, उन्होंने असी बेनती की है क्योंकि समा समाप्ति का हो चुका सी, पर फिर भी असी सकत्र साहब जी तो आग्या लैके एक शब्द की हाजिरी भाई साहब जी भाई निरंजन सिंह जी जबती कलां वाले भरनगे। मैं बेनती करांगा चढ़दी कला का हुण समाप्ति है, एक जकारा पैणा।

तुमरे शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राख हो राख नहार दयाला, नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा। श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद गोरे नम जुगाद गोरे नम सत गोरे नम श्री गुरुदेव नम अष्टपदी। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, काल कलेश तन मह मिटावो। सिमरो जसु संपरेक, नाम जपत अगणत अनेक। वेद प्रदान सिमरत सो दाखेर, कीने राम नाम एक आखेर।

उदार सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कर मन विश्राम रहाओ। प्रभ का सिमरन गर्भ नवस प्रभ का सिमरन दुख दम नस प्रभ का सिमरन काल पर हर प्रभ का सिमरन दुश्मन टर प्रभ सिमरत काश विघ्न न लाग प्रभ का सिमरन अनदिन जाग प्रभ का सिमरन भौ न व्याप प्रभ का सिमरन दुख न संताप प्रभ का सिमरन साधक संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ का सिमरन तित सिद्ध नौ नित प्रभ का सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ का सिमरन जप तप पूजा प्रभ का सिमरन बिनसै दूजा प्रभ का सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ का सिमरन दरगह मानी प्रभ का सिमरन होए सुफल प्रभ का सिमरन सुफल फला से सिमर जनाब सिमराय नानक ता कह लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते उचा प्रभ का सिमरन उदरे मोचा प्रभ का सिमरन तृष्णा पूज प्रभ का सिमरन सब किट सूज प्रभ का सिमरन नाही तम त्रासा प्रभ का सिमरन पूर्ण आशा प्रभ का सिमरन मन की मल जाए अमृत नामृत माहि समाए प्रभ दिवस सादगी रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमर से तनवंते प्रभ को सिमर से पतवंते प्रभ को सिमर से जन प्रवान प्रभ को सिमर से पुरुख प्रदान प्रभ को सिमर से बेमोहता दे प्रभ को सिमर से सर्व के राजे प्रभ को सिमर से सुखवासी प्रभ को सिमर सदा विनाशी सिमरन ते लागे जनाप दयाल नानक जन की मंगल वाला प्रभ को सिमर से परोपकारी प्रभ को सिमर तिन सद बलिहारे प्रभ को सिमर से मुख सुहावे प्रभ को सिमर तिन सुख विहाव प्रभ को सिमर तिन आत्म दीता प्रभ को सिमर तिन निर्मल दीता प्रभ को सिमर तिन अनंत कनेरे प्रभ को सिमर बस हर नेरे संत कृपाते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ का सिमरन कारज पूरे प्रभ का सिमरन कब हो न चूरे प्रभ का सिमरन हर गुण बानी प्रभ का सिमरन सहज समानी प्रभ का सिमरन नेचल आसन प्रभ का सिमरन कमल विगासन प्रभ का सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार।

में अपने गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभराते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवद न जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया।

रंग रसे दृढ़ कर मन मन है प्रतीत काल न वे मूढ़े तीत बैर विरोध काम क्रोध मोह टूट विकर्म लोभ त्रोह।

अष्टपदी दस वस्तु ले पाठ पावे, एक वस्त कान बिखोट गवावे, एक पी न दे दस पीर ले तो मुड़ा को कहा करे, जिष्ठा कृष्ण ना ही चारा ताको कीटे सद नमस्कार, जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व शोकता हो मन पूठा, जिस जन

जिसके अंतर्वश है निरंकार, तिसकी सिख तर संसार, जो तुम पानी तिन प्रभ जाता, नानक रंजन तन पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप आप करतन वेदा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। ओ भाव से आनु शकल ते रहते, सब कुछ जाने आत्म की रहते, जिस भाव तिस लय लड़ लाए। थान थनंतर दहया समाये, सो सेवक जिस कृपा करे, निमक निमक जप नानक हरि श्लोक। काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सदाय अहमेव, नानक प्रभु शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदे। जे प्रसाद सती अमृत खाहे, तिष्ठा गुरु को रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंध तन लावे, तिसको सिमरत परम गत पावे, जे प्रसाद वसै सुख मंदर, तिस ते आए सदा मनंदर। जे प्रसाद ग्रह संग सुख वसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा ते आई ते आपन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हटावे, तिस त्याग गतम।

हर जस कहत। देह प्रसाद तेरे सगर सिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकर प्रभता के, देह प्रसाद तुझको न पहुंचे। मन सास सास सिमरो प्रभु जी, देह प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताके भगत करे, देह प्रसाद भूखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों आलस की जय। देह प्रसाद अश्व हस्त सवारी, मन तिस प्रभु को कब हो न बिसारी, देह प्रसाद भाग मिलख तना, राख पुरे प्रभ अपने मन, जिन तेरी मन बंत बनाए, उठत बैठत सत सहते आई, तिसहते आई जो एक अलख, इहा उहा नानक तेरी रख।

अष्टपदी साधक संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगले खोत साधक संग मिटे बिमान साधक संग प्रगट सुगयान साधक संग बुझे पदम नेदा साध संग सब होत निवेदा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एको प्रदत्त।

0: अष्टपति
1: जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदान दोख जैसे सूर सर्व को सुख ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंक को लगे तुलपवान।

ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी का नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए, नानक जन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा ना पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह

मंत्र ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी का खोज है महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी, श्लोक उर तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक हो अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत रंजन निरंजन दर्श, पर त्रै रूप न पेखा नेत्र, सादगी टहल संत संघेत, करण न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद भिख्या पर हरै, मन की बासना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा अपरस, बैसन सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न, कर्म करत हो वह नहीं कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बादशाह, केवल भगत कीर्तन संगराचाय, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ वह नाम जपावे, नानक हो बैसनो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मलक होवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन पर बोधै, राम नाम आत्म मह सोधै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोर न आवै, वेद प्राण सिमरत बूझै मूल, सूखम मह जानै स्थूल, चौहं वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौहं वर्णा मह जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उर तारै, पस प्रेत मुक्त पात्र को तारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कित न पाई है धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिसन दरियाया, दास दसन तन पाए तन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सुरदास दरगह प्रवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्महिता वै, जीवन मुक्त सोऊ कहा वै, तैसा हरक तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक हो पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखै तैसा तिन नाओ, आपे करण करावन जोग, प्रभ भावै सोई फन होग, पसरियो आप होए अनंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे।

बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन प्रमह उदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपिसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नव तन नाम त्यावह नानक करते का अंत न पावह कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्प कह रह है कई कोट पर दुख न करह है कई कोट माया श्रम माहे कई कोट

प्रदेश प्रमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राज्य रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निपजाए कई कोट पवन पानी बै संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र श्री क्षत्र सगल समग्री अपने सूत धारै नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अर शास्त्र कई कोट की रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख्या केन्द्र पिसाच कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच सब ते नेरा सब हो ते दूर नानका पलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव है मर है कई कोट बहुजौनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काल है थक पाहे कई कोट की है तनमंत कई कोट माया मह चिंत जह जह भाणा तह तह राखे नानक सब किस प्रभ कै हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्रभु कौ खो जनते आत्म मह पार ब्रह्म हंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिन को मिल्यो प्रभ अविनाश कई कोट मंग है सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनका होय आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो विस्तार कई बार पसरे पासार सदा सदा एक एकंकार कई कोट कीने बहु भांत प्रभते होए प्रभ माहे समात ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तन होवत आत्म प्रकाश कई कोट तत् के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस भी वह अमर भय सत सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहज समावे है अपने जन को सास सास मारे नानकोय परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण करण कारण प्रवेक है दूसर नाही कोय नानक तिस बलिहारण है जल थल महियल सोए अष्टपदी कई को करण करावन करण है जोग जो तिस भावै सोई होग खन मैं थाप उथाप नहारा अंत नहीं किश पारा वारा हुक्मे तार अधर रहावै हुक्मे उपजे हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मह रहया समाई प्रभ भावै मानक गत पावै प्रभ भावै ता पाथर तरावै प्रभ भावै बिन सास ते राखै प्रभ भावै ता हर गुण पाखै प्रभ भावै ता पतत उधारै आप करै अपन विचारै दोहा सिरिया काप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो भावै सो काज करावै नानक दृष्टि अवरण आवै कहो मानुक ते क्या होया वै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ होए ता सब किश ले जो तिस भावै सोई करे अनजानत बिख्या महर जय जे जानते अपने आप बचै भरमे भूला दह दिस्तावै निमक माहि चार कुंट फिरे आवै कर कृपा जिसे अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिनमह नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै जाको अपनी करै बख्शीस ताका लेखा न गनै जगदीश जियो पिण सब तिसकी रास घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करण करावन सर्प को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावै सोई फुन थियो कबहू ऊच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब गास पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहू निरत करै बहु भांत कबहू सोए रहे दिन रात कबहू

जिसके अंतर राज अभिमान सो नरकपाती होवत सुवान जो जाने मैं जोबन मंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस कौ कर्म मंत कहावै जन्म मरै भौ जौन परमावै धन भूम का जो करै गुमान सो मूर्खंदा अज्ञान कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्ति आगै सुख पावै धनवंता होए कर गर्भावै तृण समान काश संग न जावै बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस पल भीतर ताका हुए बिरास सबते आप जाने बलवंत खिनमह होए जाए बसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुरप्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर फिरे अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कौ जो भला कहा वै तिसे भलाई निकट नया वै सर्व कीरे जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझ दे कश होए तब इस कौ सुख नाही कोए जब हे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारै को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक कहां छूटे सहस कटे लख का उठता वै तृप्त न आवै माया पाछ पावै अनेक भोग भिख्या के करै न तृप्ता वै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजा सुपन मनोरथ बिरथे सबका जय नाम रंग सर्व सुख होए बटभागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करण हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसे दृष्ट करे तैसा होए आपे आप या प्रभ सोए जो किस की नो स्वप्न रंग सबते दूर सबू के संग बूझे देखे करे विवेक आप एक आप अनेक मरे न बिनसे आवे न जाए नानक सद ही रहे समाये आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सबके साथ आप किनो अपन विस्तार सब का

अष्टपदी। संत कह दुख ने अर्जा घटाए, संत कह दुख ने जमते नहीं छुटाए, संत कह दुख ने सुख सब जाए, संत कह दुख नरक में पाए, संत कह दुख न मत होए मलीन, संत कह दुख न सोबाते हीन, संत के हत्या कौ रखे न कोए, संत कह दुख न थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संत संग निंदक पी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कह दुखन काग जोन लवै, संतन कह दुखन सर्प जोन पाए, संत कह दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कह दुखन तृष्णा मह जलै, संत कह दुखन सब कुछ लै, संत कह दुखन तेज सब जाए, संत कह दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावै ता ओए पी गत पाहे, संत का निंदक महा हतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक सर्व रोग, संत के निंदक सदा बिजोग, संत की निंदा दुख मह दुख, नानक संत भावे ता उसका पी होए मोख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्याग, संत के दुखी संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत भावे ता लय मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज न पहुंचै, संत के दुखी को ध्यान भरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा, संत के दुखी की जड़ किस नाहे, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दुखी को अवरण रखन हार, नानक संत पावे ता लय उबार, संत का दुखी बिरलाए, जो जल भी होन मछली तड़ फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा है, जो पावक इंद्र नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटाई के ला, ज्यो बुआड़ तिलखेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्योतिष भावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजै ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख ना त्रिष्टै कोय, जैसा भावै तैसा कोई होए, पया कीर्तना मेटा कोय, नानक जाने सच्चा सोए, सब कट तिसके हो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया,

एक आस हर मन रखो हो नानक दुख भरम पाओ जाए अष्टपदी। मानव की टेक बृथी सब जान देवन कौ एक भगवान जिसके दिया रहे अगाए बहुर न तसना लागे आए मारे रख है को आप मानुख कै किस नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिगन न लागे कोए उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेक ठाकुर का रंग साध संग बिन सह सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटह पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़पागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करह विचार से तनवंत गणि संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछान एतोत की ओ सो जी जानै नाम संग जिसका मन मानिया नानक तनह निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपने आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत। आनंदन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त मह सोई निर्बान एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रभ मन च दयावे सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवको किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत् सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सूखम सोई स्थूल। नह किस जन्मे नह किस मरे अपन चलते आप ही करे आमन जामन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञा कारी तारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सकल मह आप अनक जुगत रच थाप हो थाप अविनाशी नाही किस खंड धारण तार रहे हो ब्रह्मांड। अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो बावंत सगल संसार उदरै तनमंत। प्रभ के सेवक सगले उदारन प्रभ के सेवक दुख बिसारन आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जप पय निहाल। उनकी सेवा सोई लागे जिसनों कृपा करह बड़ पागै नाम जपत पाव है विश्राम नानक तिन पुरख का उत्तम करमान। जो किस करे सुप्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सहज सुभाय हुवै सो होए करण हार पछाणै सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सात है सा दृष्टाना जिसते उपजे त समाये समाये ओए सुख निदान उन्हों बने आए। आप सकाओ आप दीनो मान नानक प्रभ।

संग मिल जोत प्रगटाव है तिन संतन की भाषा तूर नानक की हरलोचा पूर मन मूरख काहे बिरलाई है पूर्व लिखी का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसह चितार जो कछ करे सोई सुख मान भूला काहे फिरह जान कौन बसत आई तेरा संग लपट रहे हो रसलो बिपतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती कर जाहे जिस वखर कौ लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया ताजा विमान लेहो मन मोल राम नाम हिरदे मह तोल लाद खेप संत संचाल अवर त्याग बिख्या जंजाल तन तन कह सब कोय मुख उजल हर दर गह सोए एह वापार विरला वापार है नानक ता कह सद बलिहार है चरण साध के तोए तोए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साध यो प्रजाइय कुर्बान साध सेवा वटभागी पाई है साध संघर कीर्तन गाई है अनेक बिघन ते साधु राख है हर गुण गाये अमर तरस चाख है ओट गई संत है दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक कौ जीवालन हार भूखे कौ देवत आधार सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किस तिसका हो करने जोग तिस बिन दूसर हुआ न होग जब जन सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मले करनी कर कृपा जिसका नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिया ते हलोए जाके हृदय को होए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दृष्ट सच आयाकार सच वरत सचा पासार पार ब्रह्म

मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग। हरण भरण जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर। अनद रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए कर ताके। राज मह राज जोग मह जोगी ताप मह तपिसर ग्रस्त मह भोगी। त्याए त्याए भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख काकने अंत न पाया। जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जनदास नाम ते आवह से। तेहो गुण मह जा को परमाए जन्म रह फिर आवह जाए। ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करहे करंग। नाना बिद की नो बिस्थार प्रभ अविनाशी अहंकार। नाना चलत करे खन माहे पूर रहे पूरण सब ठाए। नाना बिद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई। सब कट तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जी वह नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमृत वेद प्राण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगले आकार। नाम के तारे प्रिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन श्रवन। कर कृपा जिसे आपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जाका सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जाकी वाणी सत पुरुष सब माहे समाणी। सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत। सतकरणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सत नानक गुरते पाई।

सा सुमार अपने जन का पर्दा ढक है, अपने शिव की सर पर रख है, अपने दास गुने बिठाई, अपने शिव को नाम जपाए, अपने सेवक की आप पत रखे ताकि गत में तो कोई ना लगे, प्रभु की सेवक को न पहुंचे, प्रभु की सेवक ऊंच ते ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दे दिस प्रगटाया, ने की मैं गल रखे भस्म करे दस गुरु कोट लख है, जिसका सास न काटते आप ताको राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बपात जिसके करता फिरते जात, मारे न रख अपन कोई सर्व जिया का रख सोए, काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभा लख बनाणी, बारंबार बार प्रभ जपिए भी अमृत हो मान तन त्रपिए, नाम रतन जन गुरमुख पाया तिसके शिवर नाही दृष्टाया, नाम धन नाम रूप रंग नाम सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्ता ने मन तन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन के सदकाम, बोल हो जस जीवा दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात, करह भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने सुरह सुमाए, जो होआ हो बरसो जाने प्रभ अपने का हुक्म बशन, तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानू, आठ पहर प्रभ से हजूरे कहो नानक सी जान पूरे, मान मेरे तिनकी उठ लेहे मान तन अपना तिन जान देहे, जिन जान अपना प्रभु पुछता सो जन सर्व थोक का दाता, जिसकी सरन सर्व सुख पावे,